पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बम्बे शहर का बड़ा नाम है। पर गड़बड़ घोटाले

झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरे

हैं बीन कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बीन कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिके स्टेमें इन एन अनवर्गेटलिके शो 19 सितंबर थिएटर द मीरवाड में मौसमी ओब्रॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका दत्तजीन एंड निजाम वागी दुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मीरवाड.nl

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तख यार और छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह की बड़ी बहन रायन रामपरिशन की मौसी रोटरडम रॉसफेल्ड की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तखियार और छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह के बड़ी बहन बेटा रायन रामपरिशन के मौसी रोटरडम रॉसफेल्ड की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार रात के 6:30 बजे से 7:30 बजे तक फनाफन फनहालफीफन तो थालफ़्त मोनिटा मेमोरियम के मुर्दालय लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 11 बजे देंसदख एलफ्यूर किए जाएंगे मोनिटा मेमोरियम क्रिमाटोरियम लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-088-477 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार सुकरन सिंह के दुख में शामिल है।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैनी दया एंड श्रेया घोषाल। इन दोनों से आप सुने फिल्म गजनी का गीत, और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर श्रेया घोषाल मर्दाना सोनू निगम के साथ।

और तूने तो पल भर में चोरी किया रे मोराजिया, पल भर में चोरी किया मोराजिया। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इन दोनों से आप सुनिए फिल्म दबंग का गीत है। दबंग एंड दन नोख अंकेर श्रेया घोषाल जावेद अली के साथ।

नाच नेशन, दिल से डांस, डेजी रिथम्स, शक्ति डांस, से यस टू डांस, वरुण काजल नचनिया लोंड बकिना, डीजे सहित एनएम से रे, स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर,

उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टेलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां, माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो की पर नानी, आम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबसरात के निवासी। आम्स्टेलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां, माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो के पर नानी, आम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबसरात के निवासी। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले सोमवार रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदाखाफंत फन जी फनूर टॉट आख्त उर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2:30 बजे वोन्सदाख आंस्टांद हल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्टखार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्त फुरजोरखिंग परिवार अवतार और परिवार अक्लू के दुख में शामिल है।

एंड गल गल गल बन गई। यो यो हो गई था यो यो हनी सिंह, नेहा कक्कर एंड सुखबीर, इन लोगों से आप सुने। एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे
1: किसी से प्यार।
0: जुबिन नौटियाल की आवाज उजाला रेडियो एंड इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा तू देख ले उजाला.nl उजाला.nl।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto vielen bij Hilversum Noord op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En verder vielen op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मुकेश जी और आशा भोसले से। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं और एक बार फिर आशा जी हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में, इस बार शमशाद बेगम के साथ।

अजरा मोहब्बत वाला फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl। और सुनने वालों एक और पुराना गीत अश्नी माता दिन की आवाज में।

0: मामी, फुआ, फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।
1: Thank you.

0: Dit is Ujala Live. Toe, Janne, hij toch?
1: चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तख यार औत स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेव सुकरन सिंह जरबंधन की बेटी आम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह की बड़ी बहन छोटकू तौकीर चौधरी की बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी की मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी के मौसी आसास इलियाना चौधरी और शान चौधरी के आजी रोटरडम रोसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। आम्स्टरडम से आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तक यार औत स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेव सुकरन सिंह जरबंधन के बेटी आम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह के बड़ी बहन छोटकू तौकीर चौधरी के बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी के मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी की मौसिया सास इलियाना और शान चौधरी के आजी रोटरडम रोसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार की रात में 7:30 बजे तक फनाफन तोथा लफाख्त मोनिता मेमोरियम के मुर्दालय लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 11 बजे देंस द खानस्टांद एलफ्यूर किए जाएंगे। मोनिता मेमोरियम क्रेमाटोरियम लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-88-477-06-88-477। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार सुकरन सिंह के दुख में शामिल है।

तू सो जाए, मैं जागूं, राम करे कहीं ऐसा हो जाए कि मैं जागूं और तुम सो जाए, राम करे कहीं ऐसा हो जाए। मुकेश जी की आवाज और फिल्म मिलन का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने।

धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया। हाँ, धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, क्या बात है। धूल का फूल फिल्म से गीत को आप सुने, फिल्म धूल का फूल। हाँ, और गीत के गाने वाले महेंद्र कपूर एंड आशा जी। और अब लता जी के साथ सुनिए मुकेश जी की आवाज में एक गीत।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो है ये, और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम में जैसे आपको मालूम ही है तो हम आपको सुनाते हैं गीतों और गजलें, बातें कम करते हैं ताकि आप इत्मीनान से प्रोग्राम को सुन सके। और प्रोग्राम दो भागों में बनाया जा रहा है।

चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने हैं गीत और गजल की दुनिया।

आहिस्ता चल। पंकज उदास की आवाज और उजाला रेडियो पर गीत और गजल की दुनिया जो प्रोग्राम और हजारों लोग सुनते हैं, और अगर हजारों लोग सुने या ना सुने, आप जो सुन रहे हो ये हमारी खुशनसीबी है।

आदित्य सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आप सुने और अब पंकज उदास फिर हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें स्टूडियो में तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ईमेल ज़रूर भेज सकते हैं और पता है विजय आप स्टार्ट उजाला पंत NL या तो info@ujala.nl।

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने एक बार फिर पंकज उधास से गजल सुनिए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।
1: दोस्तों, कलाम हफीज जालंधरी का है, मतलब समाज फरमाए।

कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। आप पंकज उदास की आवाज़ में सुने, और पंकज उदास की आवाज़ में एक और गज़ल पेश है, और ये गज़ल होंगे प्रोग्राम का इस हिस्सा में, प्रोग्राम का पहला भाग में एक आखिरी गज़ल, और कुछ ही देर के बाद प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया के दूसरा भाग सुन सकेंगे आप।

के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों यहीं से आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, जिसमें गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं। इस प्रोग्राम में बातें हम कम करते हैं ताकि आप इत्मीनान से और बैठ करके इस प्रोग्राम से लुफ्त उठा सके। बस आज का प्रोग्राम में हमें आपसे इतना ही कहना है कि आज एक घंटे का प्रोग्राम जो है, इसमें दो फनकारों से आप गजलें को सुनेंगे। एक है पंकज उधास जी और एक है अनूप जलोता जी, जिनकर आवाज़ में आज पहली गजल प्रोग्राम में आप सुनेंगे।

हर शम्मा बुझी रफ्ता रफ्ता और दिल भी टूट गया धीरे धीरे। अनूप जलोटा जी की आवाज़ में आप सुने। और अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पंकज उधास जी।

0: जुधास जी की आवाज में आप सुने कि हंसता चेहरा गुलाब हो जाए तो मेरी ही किताब हो जाए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।
1: चश्मे पूर्णम

हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने, ये भी मुझ पर बड़ा एहसान किया है तुमने। अनूप जलोटा जी की आवाज़ में गज़ल को आप सुने। और आज का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया में बस दो फनकारों की गज़लें हम आपको सुनाते हैं, एक है अनूप जलोटा और दूसरा है पंकज उधास जी। पेश है

दिल जलाना जिंदगी, अनूप जलोता जी की आवाज में आप सुने ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

और आहिस्ता कीजिए बातें, पंकज उदास जी की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में आज दो फनकारों की गजलें, एक पंकज उदास और दूसरा अनूप जलोटा जी।

0: इसमें क्या बुराई है,
1: तेरी तारीफ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत जो बनाई है। आप सुंदर गजल को सुने अनूप जलोटा जी की आवाज में, और आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में आखिरी गजल आप सुनिए पंकज उदास जी की आवाज में पेश है।

नहीं सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।